शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320
1: राती सुपर

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

0: अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।
1: हुण अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो जिथे भी होवो जदों भी चाहो।
2: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1300 VAM वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते।
1: भावे तुसी घर होवो, दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते अपनी मनपसंद आवाज नू अपने तो दूर ना होण दियो।
2: डाउनलोड करो।

0: CJMR 1300 VD app या सुनो iHeart Radio ते।
1: इत्थों तक कि तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
0: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1300 647-910-1320
1: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919 641-741-1919 ते।
0: ते इन्ना ही नहीं, वक वक IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब टीवी राही सानू लाइव देखन दा आनंद भी माणो।
1: अपनी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबीयत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1300 VAM नाल।
0: CJMR 1300 VAM, तुहाडी अपनी आवाज, तुहाडा अपना पंजाब।
1: सुनदे रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।
2: पंजाबी आ गया।
3: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: ਕੀ ਤੁਸੀਂ अपने घर विचले IPTV बॉक्स दे पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल्स, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज़, बच्चों दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो तां भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 6475545859।
7: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल।

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
2: हेले माइक चेक आ गया। चरणजीत जोगी छा गया।
3: हेलो, कोई इत्थे तुसी कोई प्रोग्राम रखिया कर च माइक चेक हुंदा वे
2: यार? पिंडों प्रदेश प्रोग्राम है, पिंड दियां गल्लां, पुरानियां यादां आ गईयां मैनूं। जदों मैं निक्का हुंदा सी एदे पिंड दे विच किसे भोग ते कोई टेंट लगा होना तां मैनूं अपने ओह दिन चेते आ गए। मैं एदे करदा सी हलो।
3: ओदो किसे ने नहीं कहा ईको बड़ी होंदी है, क्वालिटी नहीं वधिया होई
2: तां रमणीक और तेरे वांगू किसे ने रोकिया भी नहीं मैनूं।
3: अच्छा,
2: हां ते ना ही मैनूं कोई अज रोक सकदा।
3: एदा मतलब टैलेंट ओदो दा ही आ तुहाडे च,
2: कुट कुट के भरिया, क्योंकि बाद विच जदों असीं हैलो कहके दौड़ना एक बंदे दी पक्की ड्यूटी लगी हुंदी सी, उहने सानूं कुटना फेंटना।
3: अच्छा,
2: फिर आप टेंट कोल खड़ जाना भी दस असी कुछ माइक दा ला लेना ते सदके जाइए बलियारे जाइए कुदरत दे, अज उस माइक दे जरिए रोटी कमाउण लगदा।
3: ओहो, क्या बात है, किन्नी सोहणी गल कहती।
2: लो वी सजणो मित्रो प्यारे बेलियो सहेलियो दिली इस्तकबाल तुहाडा पिंडो परदेस प्रोग्राम दे विच। मैं चरणजीत जोगी
3: ते मैं हां रमणीक कौर ते है CJMR 1320।
2: बहुत सारियां गल्लां बातां तुहाडे नाल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत ही सारियां ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।
3: ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਰੀਝਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰਾ ਤਾਈ ਪਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।
2: ਕੱਲਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।

0: Studios.
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320